0: कभी कभी नहीं रोज।
1: माइकल पीटरसन फ्रॉम परफेक्ट हार्मनी इज लॉक्ड इन एंड इज एंजॉयिंग द वाइब।
0: मैं बुला दे या फिर गले से लगा ले मुझे, या फिर छोड़ दे कर ऊपर वाले के हवाले मुझे। रहा मेरा वादा तुझे मुझसे नहीं कोई मिलेगा, पर फिर भी कोई शक तो फिर आके आजमा ले मुझे।

0: क्यों कर रहा है ये सब, क्यों और मुश्किल कर रहा है मेरे लिए। तू जा बस,
1: ठीक है।

0: सुर में गाना सीखे पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली, आने वाली। वो बेवफा, छलावट की।